0: are listening to
1: मुसीबत तो मुक्त करावे जुल्मते पाप में अंधेरे चुन किरण चमकी संमत 1526 सन 1469 ईस्वी समय पंजाब दे जिला शेखुपुरा दे तलवंडी पिंड विखे श्री गुरु नानक देव जी ने अवतार धारिया ते जगत जलंदे नूं ठाणे नाल गुरु जी ने सुख शांति दा पैगाम देण च गुजारिया ते संसार अंदर रहिंदिआं गृहस्थी विच पत्ती दा मार्ग दर्शाया।

मेरी चिंता मिट गई है और मां ना मेनू डर आउंदा है ते ना मेरे अंदर कोई चिंता आउंदी, इसलिए कि तू मेरा सारिया थावां ते राखी करना, सारिया थावां ते तू मेरा राखा है, जे तू मेरे नाल है ते मैनू डर किसदा, मैनू डर किसदा, जे तू मेरे नाल है तो मैनू अग की करूगी, जे तू मेरे नाल है तो मैनू कोई विपता संसार की सता नहीं सकती और मेरा कोई नुकसान और डरा धमका नहीं सकती मैनू, क्योंकि तू मेरा राखा है सारिया थावां ते। इसे लिए मालिक सतगुरु सच्चे पातशाह जी ने फरमाया, हजूर ने बड़े माण विच बड़े जोर विच किया कि एडा मेरा वाहिगुरु वड्डा है कि भावे मैं अग विच भावे मैं देग विच भावे तत्तियां रेतां सीस ते पईआं पर मैनू तत्ती वाह भी नहीं लगी। ये कौन कहेगा? खसम वाला, मालक वाला, गुरु वाला जिहड़ा है ही बेगुरा, वो कहेगा कि जिसनू कदी पिता दी गोद विच बैठन दा सुभाग समा ही नहीं प्राप्त होया, वो मान की कर सकदा किसे ते। जिसने कदी पिता कोलों अमृत ही नहीं पीता, वो कह सकदा है कि मेरा बापू मेरा पिता मेरे वास्ते आ करेगा? नहीं, नहीं कह सकेगा, उन्हूं अपनी कमजोरी दा पता है। लेकिन सतगुर सच्चा पातशाह बड़े तान नाल बड़े मान नाल हजूर फरमांदे ने, ताती वाओ न लग गई पार ब्रह्म सरनाई, चौगिर्द हमारे रामकार दुख लगे न पाई, सतगुर पूरा पेटिया जिन बणत बनाई, राम नाम औखद दिया एकै लिव लाई, राख लिए तिन रखन हार सा ब्याध मटाई, कहो नानक कृपा पई प्रभ पए। उस मान विच आके तान विच आके असी कौन हां? सारे बच्चे सारा परिवार सतगुरु जी दा, बच्चे और बच्चियां परिवार मालिक सतगुरु, सतगुरु परिवार दा मालिक है साडा। तो असा ए तो कदी नहीं कहना कि असी सतगुरु दा परिवार हां, पर आपां पढ़ लईए जरूर, सारी संगत पढ़ियो, गुरु अर्जन देव अकाल पुरख की गोद विच ते सारी संगत गुरु अर्जन देव सच्चे पातशाह दे चरणा उते, फोटो ते इवें आएगी ना, पता ते इवें ही लगेगा ना, अकाल पुरख की गोद विच अकाल पुरख दे चरणा उते साहिब गुरु अर्जन देव सच्चा पातशाह और उन्हां दे चरणा उते आपां सारे। उस मान विच आके सतगुर सच्चे पातशाह हजूरी विच जिवें उन्हां ने माण कीता, आपां वी माण करिए ने सारे। तो बोलियो सारे, बीबियां उच्ची आवाज विच और वधे कंट्रोल विच, गलबात छोटी छोटी साडे को नहीं आउणी चाहीदी, क्योंकि सत्संग है, सचखंड है, वैकुंठ है, इसी महिमा दा पारावार नहीं, जे असीं नहीं सोचांगे तो बेअदब होवांगे। सारे पढ़ियो।

मेरी सार करे हम हर के बाल को। मुंह मंगा सोई देवदा हर पिता सुखदायक। अवगुण कौन चितार दे अवगुण कौन चितार दे गल सेती लायक। ज्ञान रास नाम तन सौ प्यो नू इस सौदे लायक। सांझी गुरु नाल बहाले मैनू एक भाई वाली कराई। मेरे वाहिगुरु ने गुरु नानक सच्चे पातशाह नू मेरे नाल भाई वाल रला दिता। यानी साडा दोवां दा सांझा हो गया उस विच। सांझी गुरु नाल

मगर सारे कार्य स्वारण वाला समर्थ ओ परिपूर्ण परमात्मा है। ते गुरसिख ए यकीन करदा है कि मैं मनुख दे चरना कमला तो की लेना है, मनुख दी ओट करके की लेना है, क्यों ना मैं उस परमेश्वर दी ओट लवां।

सतगुर के चरण तोय तोय पीवा, सतगुर के चरण तोय तोय पीवा, गुरु नानक जप

चरण कमल गुर के जपत हर जप हो जीवा। चरण कमल गुर के जपत हर जप हो जीवा। चरण पखार करम गुर सेवा बार जाऊं लखबरिया। जय प्रसाद ए पौजल तरिया जन्नानिक पैतलिया।

काज न ग्रह राज माल, तेरे काज न बिखे जंजाल। इष्ट मीत जान सब चले, हर हर नाम संग तेरे चले।

गोविंद राय जी कुछ वड्डे होए, चार पंज साल दे लगभग आप दी उम्र रोज छोटे छोटे बच्चियां नू नाल लैके ते गंगा दे किनारे खेलने जाउंदे सन। इस गंगा दे घाट ते शिव दत्त पंडित नाम करके एक पंडित तपस्या करया करदा सी। 70 साल दी जिस दी उम्र श्री रामचंद्र भगवान जी दा उपासक सी, रोज मूर्ति श्री रामचंद्र जी दी अगे रख के प्रसाद अगे रख के अरदास करदा सी, हे भगवान भोग ला। और इस शिव दत्त पंडित नु एक बार अपना दर्शन दियो प्रभु, रोज अरदास करे कि इतनी मेरी उम्र हो गई, हुण मैं बुढ़ा हो चलिया हां, एक बार अपना दर्शन करा दियो, किते ऐसा ना होवे के तेरे दर्शन कीतियां बगैर ही इस देही विचों प्राण निकल जान। सात सिगत बोलो श्री। और फिर मैनू आ तेरे दर्शना वास्ते फिर जन्म लेना पवे, हे मेरे प्रभु एक वरा दर्शन कराओ। ता आज जदों अरदास कर रहे है, इस दी अरदास क्योंकि बिरथी कदे ना हो वही जन की अरदास। जदों कोई मन नाल प्रेम नाल अरदास करता है ता उसकी अरदास प्रभु दे चरणों विच पहुंचदी। गोविंद राय जी खेडदे हुए आ गए ते पंडित शिव दत्त नु वेख्या के बेनती कर रहे है, प्रभु भोग लाओ, प्रसाद अगे रखिया, लड्डुआं दा थाल भगवान श्री रामचंद्र दी मूर्ति अगे अरदास विच जुड़िया। ताई गोविंद राय जी ने आके थाल विचों एक लड्डू चुक के मुंह विच पा लिया। पंडित शिव दत्त ने देखिया के कोई बालक है और थाल विचों प्रसाद दा लड्डू चुक के मुंह विच पा ले, ता पंडित शिव दत्त नु बड़ा क्रोध आया, कहन लगा तू कौन है और मेरी पूजा विच विघ्न पा रहे है, जा चला जा इत्थों ते फिर कल या दोबारा आके मेरी पूजा विच विघ्न नहीं पाउणा। साहब जी चले गए बच्चियां नाल खेडदे होए गोविंद राय जी अगे। अगले दिन पंडित शिव दत्त फिर जदों पूजा विच जुड़िया और अरदास कीती, भगवान भोग लाओ, गोविंद राय जी फिर खेलदे होए आए ते फिर थाल विचों लड्डू चुके मुंह विच पा ले। सात सगत बोलो श्री। आज पंडित शिव दत्त बड़े गुस्से विच गोविंद राय जी दे पिछे पिछे दौड़िया पकड़न वास्ते, अगे अगे गोविंद राय जी, पिछे पिछे पंडित शिव दत्त। गोविंद राय जी दौड़दे होए माता गुजरी दी गोद विच जा बैठे, कहन लगे मां जी आ पंडित सानू गुस्सा करदा। ताई पंडित शिव दत्त भी आ पहुंचिया, कहन लगा ए तुहाडा लाल है? हां मेरा लाल है। पंडित जी हुक्म करो की गल है? माता गुजरी ने पुछया, ता कहन लगे अज 2 दिन तो मेरी भगती विच विघ्न पा रहा, मैं प्रसाद रखदा हां भगवान राम जी दी मूर्ति अगे के प्रभु भोग लाओ ते ए थाल विचों लड्डू चुके मुंह विच पा लैंदा। ता गोविंद राय जी कहन लगे मां जी असी ता इहदी भगती विच कोई विघन नहीं पाउंदे, ए आप ही रोज कहिंदा भोग लाओ ते असी जदों प्रसाद चुके भोग लाया ते सानू गुस्से करदा। सात सगत बोलो श्री। ता पंडित शिव दत्त बड़े क्रोध विच कहन लगा मैं तेनू ता नहीं कहिंदा भोग लाओ, मैं ता अपने इष्ट श्री रामचंद्र जी नू कहिंदा हां भोग लाओ, ते जे कल तू आया और मेरी भगती विच विघन पाया ता फिर मैं तेनू देख लवांगा। उसे नाल बोल के पंडित शिव दत्त चला गया। तीजे दिन मुड़ गंगा दे किनारे जदों आके भगती विच जुड़िया ते थाल प्रसाद दा अगे रखिया ते बेनती कीती कि हे भगवान भोग लाओ, गोविंद राय जी फिर बच्चियां नाल खेडदे आए ते फिर थाल विचों लड्डू चुके मुंह विच पा लिया। अज पंडित शिव दत्त ने गोविंद राय जी नूं बांह विचों पकड़ लिया, आख्या 2 दिन तो मेरी भगती विच विघन पा रहे हैं, अज अज नहीं छड़ना। कोल पई सी सोटी, सोटी चुके ज्यो गोविंद राय जी नूं मारन वास्ते चुकी तां गोविंद राय जी ने चट अपना रूप भगवान श्री रामचंद्र जी दा बना लिया। सात सगत बोलो श्री। पंडित शिव दत्त वेख के हैरान रह गया, भगवान श्री रामचंद्र जी जिन्हां दा मैं उपासक इस बालक विचों मैनू दर्शन

आख्या है एक दात पुत्र दी मंगन आई सा, लेकिन आज गुरु नानक दे दर तो भी जवाब हो गया। भाई गुरदास जी कहन लगे साहब जी ने की आख्या है? आख्या साहब जी क्यों देन तेरे पागां विच पुत्र है ही कोई नहीं। ता भाई गुरदास जी कहन लगे ता तू बेनती करनी सी जे उत्थे पागां विच नहीं लिखिया ते हुण लिख दियो। सत संगत बोलो श्री उत्थे भी लिखण वाला तू ही है और इत्थे भी देण वाला तू ही है। ता बीबी सुलखणी जुगत दसी भाई गुरदास ने। भाई गुरदास जी कहन लगे जदों कल साहब जी साहब जी जाऊन गए ना बाहर घोड़े ते सवार होके, ता फिर तू रस्ते विच बेनती करी। आज बीबी सुलखणी रस्ते ते आके खड़ो हो गई क्योंकि पता सी कि आज इस रस्तेओं मेरी पीरी दे मालक गुरु हरगोबिंद जी ने लंघना है। आके रस्ते ते खड़ो गई। जदों साहब जी आए घोड़े ते चढ़े ते बीबी सुलखणी ने चरण पकड़ ले। ओ गरीब निवाज कृपा करो, नाम मेरा सुलखणी, मैं वस्ती हां चौबे, अर्ज करेनी हां गुरु हर गोबिंद अगे, अफल जांदी नो कोई फल लगे। सात संगत बोलो श्री, बेनती कर दी हां एक पुत्र दी दात। साहब जी कहन लगे तेनू कल जो किया सी तेरे भागां विच नहीं। आख्या फिर गरीब निवाज उत्थे भी भाग लिखण वाला तू ही है और इत्थे भी भाग बनाउण वाला तू ही है ना, जे उत्थे नहीं लिखिया ते हुण लिख दियो। ऐसी जदों प्यार दी बेनती कीती साहब जी बड़े प्रसन्न हो, आख्या चंगा सुलखणीए तेनू पुत्र बख्शिया। बीबी सुलखणी हाथ जोड़ के कहन लगी मेनू बहुतिया ने किया तेरे घर पुत्र होएगा लेकिन अज तक होया कोई नहीं, हुण मेनू कहते इतबार नहीं, मेनू लिख के दे के जाओ। साहब जी कहन लगे अच्छा फिर कागज कलम लिया लिख दईए। और तां कुछ ना मिलिया सुलखणी नू, सामने एक ठीकरी पई सी घड़े दी। ओ ठीकरी चुक लिया ही कहंदी है गरीब निवाज इसे ते लिख के दे दियो। साहब जी इसे ते लिख दियो अपने तीर नाल लिख के दियो। सात संगत बोलो श्री वाह। गुरु हरगोबिंद जी ने पठे विचों तीर कढ़िया ते जदों ठीकरी ते एका पाउण लगे ता बीबी सुलखणी ने हाथ जोड़ के साहब जी दे घोड़े अगे बेनती कीती, तू ता गुरु दा घोड़ा है, साहब जी हर वेले तेरे ते असवारा करदे हन, गुरु नानक दे ता कुत्तियां विच भी करामात है, तू भी कोई करामात करके दिखा। घोड़े ने आख्या सुंभ हिलाया, आख्या ठहर मैं तेनू जो लै के देन लगा हां ओ दुनिया वेखेगी। सात संगत बोलो श्री वाह। साहब जी ठीकरी ते तीर नाल जो एका पान लगे ते घोड़े ने जो सुंभ हिलाया एके दा सत बन गया। साहब जी कहन लगे लै सुलखणीए एक देन लगे सा ए तां सत लिखे गए। कहन लगी गरीब निवाज लोड़ ही सत्तां दी सी, एक नाल बनना ही कुछ नहीं सी। सात संगत बोलो श्री वाह। जमीना जदादां बहुत हन लोड़ ही सत्तां दी सी। ते फिर जदों बीबी सुलखणी दे घर पहला पुत्र जमिया लै के मीरी पीरी दे मालक गुरु हरगोबिंद दे चरणां विच लै के पहुंची, जा चरणां ते मत्था टिकाया ते रस्ता नाल की जाप रही है।

अरदास ने अर्ज करनी है, अरदास करनी। अरदास दा मकसद एहो ही है कि आउन वाला जो समा है मनुख उस तो जानू नहीं कि आउन वाले समय दे विच की हो सकता है, सुख मिल सकता है या दुख मिल सकता है, मगर जो परमेश्वर है, जो साडा साईं है, साडा खसम है, उसनू ज्ञान है, वो जानदा है कि आउन वाला समा कैसा है। ते मनुख उस शक्तिमान परमात्मा दे चरना कमलां विच ए बेनती करदा है कि है मेरे साहिब, मेरा आउन वाला जो समा है उस दे विच मैनू सुख प्राप्त होऊं, मैं इसे करके तेरे चरना कमलां विच अरदास करदा। ते साहिब फरमाउंदे हन कि ए गुरसिख, तू उस दी रहमत दा पात्र बन, क्यों जो ओ तेरे ते मेहर कर देवे ते तेरे सारे कार्ज रास हो जाणगे। मेहर करे जिस मेहरवान।

पास ओट प्रभ तोरी सबको वासे तेरी बैठा तजो सियाल सुरजनो सिमरो हर हर

बैठे दो घड़ियां वास्ते पर भाई सब लिखते ने आए संत ब्राह्मणे कीर्तन होवा रहन सबाई।

अपना काम भूल गए। जे राजे की मालिश कर ए ना गया राजा इनू सजा देवेगा। तां परमेश्वर ने आप सहन ना

तेरी उपमा तोहे बना ला। भट्टा ने साहब दी महान वडियाई कीती। साहब गुरु अमरदास सच्चे पातशाह मन नू संबोधन करदे ने, जप मन मेरे तू एको नाम। एथे मन दी अवस्था भी बयान कीती। कहंदे ने तरह तरह दे बड़े सुंदर वस्त्र भी पहने होने इंसान ने, चंगे पाउडर भी लगाए होने इस शरीर नू, पर जे मन मैला है तां साहब कहंदे ने सब कुछ ही मैला।

मन करके सेवा है बाणी पढ़नी, पढ़न वास्ते प्रेरणा देनी, उपदेश जो कहना वो अपने आप कमाउना भी, अपने मन करके बाणी पढ़नी, विखावा करके नहीं। जे किधरे कोई टूटिया होया मन, कोई टूटिया होया मनुख, प्रेरणा दा सदका जुड़ जाए गुरु नानक दे चरणा नाल, ता समझ तेरा भी जन्म सफल है। वाणी पढ़नी, पढ़न लई प्रेरणा देनी, शुभ मार्ग ते चलना, शुभ मार्ग ते चलन लई प्रेरणा देनी, सिमरन करना, आप करना, होर नानू प्रेरणा देनी, किवें सिमरन करीदा है। और धन करके सेवा जो अकाल पुरख वाहिगुरु ने बख्शिश की थी, धन पदार्थ किरत कमाई करके प्राप्त होया, उस विच्चों

हजूर कह ले क्यों पाई, क्यों घबराया है, की गल हुई। कहन लगा सचे पाछे ए पता नहीं की खेड वरती है, ए शहद विच कीड़े कित्थों आ गए, ते बिल्कुल ताजा है। जदों के एक गल खास ध्यान देन वाली है कि शहद जेड़ा है एक ऐसा पदार्थ है जेड़ा शुद्ध होवे, ओदे विच भावे जिन्ने चिर दा मर्जी रखिया होया होवे कीड़े नहीं पै सकते। पर ऐसे एक अजीब कौतक वरतिया, एदियां नजरां ने एक वेखिया, ओदे विच कीड़े ही कीड़े पए पए। कहन लगा सचे पातशाह ये कीड़े कित्थों आ गए। हजूर मुस्कराए, कहन लगे भाई तू ते कहंदा सी बड़ा निर्मल शहद है, बड़ा स्वच्छ शहद है, पर एदे तां कीड़े भरे पए ने। पसीना आ गया, कंब गया, चरण पकड़ ले सचे पातशाह, इस खेड़ तो मैं अनजान हां, ए किवें पाणा वरतिया। पातशाह बख्श लो। हजूर कहन लगे गुरमुखा जिस वेले मंगया सी उस वेले ते दिता कोई ना, बड़े तरले पाए, बड़े वास्ते पाए, उस वेले ते दिता कोई ना, हुण की लैण वास्ते आए। जे किते थोड़ा जा शायद ओथे ते दिंदा उस बुजुर्ग नूं तां मैनूं पहुंच जाणा सी। ओ सेवा मेरी सी, किसे लाचार दी सेवा, किसे बेसहारे दी सेवा, ओ मेरी सेवा है, ओ गुरु की सेवा है। ए सेवा इस भावना नाल कीती जावे तां गुरु प्रवान करदा है, क्योंकि गुरु सारी सृष्टि नाल प्यार करदा है, गुरु हर एक जीव नाल प्यार करदा है, ओ ते हर एक नूं जी दान दिंदा है। ऐसा है मेरा सतगुरु जो मनुख मात्र नूं प्रेरणा दे रहे ने, भाई सेवा करके अपना जीवन सफल कर ले, तेरा मन टिक जाएगा, सुख मिलेगा, शांति मिलेगी, और यह लोक सुखिए पर लोक सुहेले हो जाएंगे। कह रहे

नानक राय सब सिखन को सुख दे जैते पए सहाय। आज बेदियां दी कुल विच गुरु नानक ने आके जन्म लिया और इस कुल नू धन कर दिता। इस वास्ते गुरु

अंगूठी पा के जदों खेडन वास्ते बाहर गए ते खेल के जदों घर वापस आए ते हाथ विच कुंदरी कोई नहीं सी। अंगूठी ना वेख के माता तृप्ता जी कहन लगे, नानक हुणे मैं तेरे हाथ

खेत दा मालक जदों राय बुलार दे कोल पहुंचिया आख्या राय जी इस बालक दी गाइयां मजियां ने मेरे

राय जी ने पछाण लिया ए ता मेहता कालू पटवारी दा पुत्र है। आख्या नानक तूवे क्यों कीता? आख्या मैं ता उस प्रभु दे रंग विच बैठा सा, मेनू नहीं पता। मैं ता कालू नू सदिया। मेहता जी जदों आए, राय ने आख्या वेख वही तेरे पुत्र नानक ने गाइयां मजियां।

तो तेरा आख्या ते फिर जेड़ा आउंदा गया उदी चोली भरी गई ते कहंदे गए तेरा तेरा तेरा सत संगत बोलो श्री तेरा ही तेरा करके चोलियां भर रहे बाला लिया लिया के

तेरा मोदी खाना गुरु नानक लुटा रहा है, जाके उदे कोलो हिसाब किताब ले, नहीं तो लखा दा घाटा तेनू हो जाएगा। कोई लोड़वंद गरीब गुरबा गुरु नानक कोल आ जांदा है, चोली विछांदा है, गुरु नानक तेरा ही करके विच पा देंदा है, ते कोई पैसे नहीं लेंदा किसे कोल, जाके गुरु नानक कोलो हिसाब ले। दौलत खान जदों आया कहन लगा, गुरु नानक मैं तेरे नाल हिसाब करने, कितने दिन हो गए तेनू काम कर दिया, पहले हिसाब ला लईए के की नफा होया की नुकसान होया, ते अगे फिर काम चलावांगे। साहब जी कहन लगे, बेशक हिसाब कर लो भाई, कर लो हिसाब। ते जदों सारा हिसाब होया, इतिहास विच लिखे है के दौलत खान जदों सारा माल अंदरों गिणिया तोलिया, ते की हिसाब विच लिख लिया, हिसाब कीता ते 735 रुपये गुरु नानक दे वध निकल गए। दौलत खान बड़ा हैरान होया, कहन लगा मैं सुनिया के तू सारिया नू रब दे नां ते दे जांदा है, ते फिर तेरे कोल ए पैसा नफे विच कित्थों निकल आया। गुरु नानक सच्चे पातशाह कहन लगे, दौलत खान जो रब दे रस्ते ते खर्च

आवाज आई आ नानक मैं तेनू संसार ते हटियां करन वास्ते ता नहीं भेजिया, मैं ता तेनू संसार विच भेजिया जगत जलंदा जल रहा है उना नू जाके ठारना है तू। ता गुरु नानक सच्चे पातशाह ने हाथ जोड़ के बेनती की थी, हे निरंकार मेनू उपदेश दियो मैं संसार नू की जपावां, मैं संसार नू की जपावां। ता आवाज आई उस जोत विचों, नानक तू संसार नू जपावना है, जगत जलंदे नू ठारना है ए उपदेश देके। उस जोत विचों आवाज आई।

है ना ओ मैं जप रहा हूँ। गुर प्रसाद जप आद सच जुगाद सच है भी सच नानक उसी भी सच। हे निरंकार तू आद विच भी सच सै जुगाद विच भी सच सै हुण भी सच है ते सदा तेरा नाम सच ही रहेगा। ए उपदेश लेता इत्थे गुरु नानक सच्चे पातशाह जदों वेई नदी विचों बाहर ना निकले मर्दाना डरिया के गुरु नानक सच्चे पातशाह किथे गए। बाला भजिया

बेबे नानकी प्रतीत वाली सी परोसे वाली सी कहन लगी इवें ना आखो मेरा नानक संसार विच डुबन वास्ते नहीं आया ओ तां कईयां नूं तारन वास्ते आया है। नानक कदे डूब नहीं सकदा ओदा जरूर कोई कोतक होवेगा कम होवेगा किसे कम नूं गया होवेगा ओ जरूर आवेगा और समा पा के जदों

उतारते हुए हरिद्वार जा पहुंचे। हरिद्वार दी जदों पवित्र धरती ते पहुंचे ते की वेख्या उत्थे दे लोग कर्म कांड

ताई साहब जी ने भी गंगा विचों एक लोटा लिया ते आख्या पंडित जी आ की कर रहे हो। पंडित कहिंदा जी मैं सूरज देवता नू जल दे रहे। साहब जी कहन लगे अच्छा आ पूर्व वाल करके पंडित जल दे रहा सूरज नू ते गुरु नानक ने पश्चिम वाल मुंह कर लिया ते लोटे दे नाल जल पाना शुरू कर दिता। सात संगत बोलो श्री जी। पंडित कहन लगा सूरज इस पासे है।

साहब जी कहन लगे जे तेरा पानी सूरज तक पहुंच सकदा है तां क्या साडा पानी करतारपुर खेती तक नहीं पहुंच सकदा। पंडित जी कर्म कांडा विच कुछ नहीं जे पिया, जे परमेश्वर दा नाम नहीं जपोगे और कर्म कांडा विच पाओगे तां इना कर्मा कांडा ने तुहाडा उधार नहीं करना, उधार तां प्रभु दे नाम ने करना है। साथ सिखत बोलो श्री बाबा नन सिंह जी महाराज कलेरां वाले पूर्ण ब्रह्म ज्ञानी आप क्या कर दे सन भाई, आ दुनिया दे जितने कर्म कांड जप तप हन ना, ए सारियां सिफरां हन, सिफरां ए सारे जीरो हन, और बेशक एक कागज उत्ते जितने मर्जी जीरो पा दे उना दी कोई भी मुल नहीं है जब तक उना दे अगे एका ना पवे। जे एक पावेगा, एका लिखेगा और उस तो बाद जीरो पावेगा ते दस बन जाएगा, दो जीरो पावेगा सौ, तीन पावेगा हजार। इसे तरह दुनिया दे जितने कर...

कर्म सारे नाश हो जाएंगे। जे परमेश्वर दा नाम होया तेरे कोल ता उना कर्मा कांडा दा वही मुल पैणे। सात सगत बोलो श्री जिवें एके तो बिना उना सिफरा दी कोई मुल नहीं, इसे तरह एक प्रभु दे नाम तो बिना जो कुछ मर्जी करदा रह कदे थाए नहीं पवेगा तेरा। गुरु अर्जन देव पातशाह बाणी विच

कपाट खुल गए, ज्ञान हो गया कि मैं किस वास्ते संसार से आई हूं और मेरा मनोरथ की है। ऐसा सच दा उपदेश गुरु नानक ने दिता उत्थे संगतां नूं के भाई एक परमेश्वर दे नाल जुड़ो, एक प्रभु दा सिमरन करो, उस सिमरन ने ही तुहानूं इस संसार सागर तो पार करना है।

सतगुरु कहंदे ने इस मन को जन्म जन्म की मल लागी, ते जन्मा जन्मा दी मैल नाले मन काला भी हो गया, ते मैल नाल पारा भी हो गया। इस मन को जन्म जन्म की मल लागी, काला होआ स्याओ फिर तरेगा किवें, मैल नाल ते पारा हो गया।

जे तरना है भवजल तू ते मन भी सच्चा होवे ते जो तू मुख तू कमे ओ भी सच्ची होवे जो कुछ तेरे अंदर है ओ ही बाहर होवे ताके संसार नू ते तू खुश कर लेगा पर जद मन भी सच्चा होवेगा ते मुख विच भी सच बोलेगा ते फिर निरंकार भी सच्चा सच तेरी जेगा ओ सच दा उपाशक सच वंडन वाला सच दा प्रचार करन वाला नगरी नगरी ते द्वारे द्वारे भाई साहब भाई गुरदास कहंदे ने चढ़िया सोधन धरत लुकाई भाई मरदाने नू नाल लैके जगत दे मालिक कहन लगे मरदाने आ चल तैनू ऐसे इंसान नू मिलावा जेड़ा कम ता होर करदा लेकिन ओदे मन विच मैं धर्म दा कम पिया करना मैं सच्चे नू रिझा लवांगा ते सच्चे नू रिझा के मैं शायद तर भी जावां तो लंबे दी धरती नू तार दे गरीब नवाज पातशाह ओथे लागे एक नगरी एक हवेली लागे जाके गरीब नवाज

विश्राम दी भी जरूरत नहीं, दो घड़ियां बहने गुरमुखा फिर असा चल दे बनने। पर भोजन ता कर लो ना। आवेखो कई लोग ब्राह्मण ऋषि मुनि तपी भोजन पे करदे ने, यथाशक्त सेवा भी करदा। ए अज नहीं, ए रोज ही ऐदा चलदा है। सतगुरु कहन लगे भाई फिर ता तैनू कोई तगड़ी कमाई होवेगी, की कम करदे हो तुसी? जिस वेले आखिया ना की कम करदे हो, कदे अपने वल वेंदा है, कदे बाबे वल वेंदा है।

चोर की हामा परे न कोए, चोर किया चंगा क्यों होए। पर तू सच बोले है, असी खुश होए हैं। बाबा जी खुश होए हैं तो फिर मेरे घरों को खेते ना ना जाओ, दो प्रसादे छक लो। सतगुरु कह लगे फिर कदे आवांगे ते छकांगे, हुण असी चलने हैं।

गरीब मार ना करी ते लून खा के हराम ना करी। सच बोली, गरीब मार ना करी ते लून खा के हराम ना करी। ए तीन बचन चेते रख, भाई करी जा चोरी जे तू नहीं मुड़ सकता।

ऐसा हर सेविए नित ध्याइए। साहिब गुरु रामदास साहिब जी फरमान कर दे, ऐसा हर सेविए नित ध्याइए, जो खिन में किल बिक सब करे बिनासा, जे हर त्याग अवर की आस कीजे, ताहर ने फल सब घाल गवास। मेरे मन हर ऊपर कीजे भरवासा, जे जाइए ते नाल मेरा स्वामी, हर अपनी पैज रखे जनदासा। जे अपनी बिरथा कहो अवरा पे, ता आगे अपनी बिरथा बहुत कढ़ासा। अपनी बिरथा कहो हर अपने स्वामी पे, जो तुम्हारे दुख तक काल कटासा। सो ऐसा प्रभ छोड़ अपनी बिरथा अवरा पे कहिए,

0: सिकंदर
1: को हर समान नहीं राजा ए तू पद सब दिवस चार के झूठे करत दिवाजा तेरो जन होए सो एकत डोले तीन भवन पर छा जा हाथ पसा

गोविंद राय जी कुछ वड्डे होए, चार पांच साल दे लगभग आप दी उम्र रोज छोटे छोटे बच्चियां नू नाल लेके ते गंगा दे किनारे खेलने जाऊं दे सन। इस गंगा दे घाट ते शिव दत्त पंडित नाम करके एक पंडित तपस्या करया करदा सी। 70 साल दी जिस दी उम्र श्री रामचंद्र भगवान जी दा उपासक सी, रोज मूर्ति श्री रामचंद्र जी दी अगे रख के प्रसाद अगे रख के अरदास करदा सी, हे भगवान भोग लाओ। और इस शिव दत्त पंडित नु एक बार अपना दर्शन दियो प्रभु, रोज अरदास करे कि इतनी मेरी उम्र हो गई, हुण मैं बुढ़ा हो चलिया हां, एक बार अपना दर्शन करा दियो, कि ते ऐसा ना होवे कि तेरे दर्शन कीतिया बगैर ही इस देही विचों प्राण निकल जान। सात सिगत बोलो श्री। और फिर मैनू आ तेरे दर्शना वास्ते फिर जन्म लेना पवे, हे मेरे प्रभु एक बार दर्शन कराओ। आज जदों अरदास कर रहे है इस दी अरदास, क्योंकि बिरथी कदे ना हो वही जन की अरदास। जदों कोई मन नाल प्रेम नाल अरदास करता है ता उस दी अरदास प्रभु दे चरणां विच पहुंचदी। गोविंद राय जी खेडदे होए आ गए ते पंडित शिव दत्त नू वेख्या के बेनती कर रहे है, प्रभु भोग लाओ, प्रसाद अगे रखिया, लड्डुआं दा थाल भगवान श्री रामचंद्र दी मूर्ति अगे अरदास विच जुड़े है। ताई गोविंद राय जी ने आके थाल विचों एक लड्डू चुक के मुंह विच पा लिया। पंडित शिव दत्त ने देखिया कि कोई बालक है और थाल विचों प्रसाद दा लड्डू चुक के मुंह विच पा लिया, ता पंडित शिव दत्त नू बड़ा क्रोध आया, कहन लगा तू कौन है और मेरी पूजा विच विघ्न पा रहे है, जा चला जा इत्थों, ते फिर कल या दोबारा आके मेरी पूजा विच विघ्न नहीं पाऊंगा। साहब जी चले गए बच्चियां नाल खेडदे होए गोविंद राय जी अगे। अगले दिन पंडित शिव दत्त फिर जदों पूजा विच जुड़िया और अरदास कीती, भगवान भोग लाओ, गोविंद राय जी फिर खेलदे होए आए ते फिर थाल विचों लड्डू चुके मुंह विच पा ले। सात सगत बोलो श्री। अज पंडित शिव दत्त बड़े गुस्से विच गोविंद राय जी दे पिछे पिछे दौड़िया पकड़न वास्ते, अगे अगे गोविंद राय जी, पिछे पिछे पंडित शिव दत्त। गोविंद राय जी दौड़दे होए माता गुजरी दी गोद विच जा बैठे, कहन लगे मां जी आ पंडित सानू गुस्सा करदा है। ताई पंडित शिव दत्त भी आ पहुंचिया, कहन लगा ए तुहाडा लाल है? हां मेरा लाल है। पंडित जी हुक्म करो की गल है? माता गुजरी ने पुछया, ता कहन लगे अज 2 दिन तो मेरी भगती विच विघ्न पा रहे, मैं प्रसाद रखदा हां भगवान राम जी दी मूर्ति अगे के प्रभु भोग लाओ ते ए थाल विचों लड्डू चुके मुंह विच पा लैंदा। ता गोविंद राय जी कहन लगे मां जी असी ता इहदी भगती विच कोई विघन नहीं पाउंदे, ए आप ही रोज कहिंदा है भोग लाओ ते असी जदों प्रसाद चुके भोग लाया ते सानू गुस्से करदा है। सत सगत बोलो श्री। ता पंडित शिव दत्त बड़े क्रोध विच कहन लगा मैं तेनू ता नहीं कहिंदा भोग लाओ, मैं ता अपने इष्ट श्री रामचंद्र जी नू कहिंदा हां भोग लाओ, ते जे कल तू आया और मेरी भगती विच विघन पाया ता फिर मैं तेनू देख लवांगा। उसे नाल बोल के पंडित शिव दत्त चला गया। तीजे दिन मुड़ गंगा दे किनारे जदों आके भगती विच जुड़िया ते थाल प्रसाद दा अगे रखिया ते बेनती कीती कि हे भगवान भोग लाओ, गोविंद राय जी फिर बच्चियां नाल खेडदे आए ते फिर थाल विचों लड्डू चुके मुंह विच पा लिया। अज पंडित शिव दत्त ने गोविंद राय जी नूं बांह विचों पकड़ लिया, आख्या 2 दिन तो मेरी भगती विच विघन पा रहे, अज नहीं छड़ना। कोल पई सी सोटी, सोटी चुके यो गोविंद राय जी नूं मारन वास्ते चुकी, ता गोविंद राय जी ने चट अपना रूप भगवान श्री रामचंद्र जी दा बना लिया। सात सगत बोलो श्री। पंडित शिव दत्त वेख के हैरान रह गया, भगवान श्री रामचंद्र जी जिन्हां दा मैं उपासक इस बालक विचों मैनू दर्शन

इम्तिहान लिता अपने पुत्रां दा भी और अपने सेवादार पाई लेने दा भी, क्योंकि पता सी के आ जो गद्दी है इस ते ओही बैठ सकता है जो इस गद्दी दे लायक हो। सात संगत बोलो श्री, और बिना कसौटी ते परखे हुए, बिना परीक्षा लेते हुए आ किवें पता लगे के इस गद्दी ते बैठ दा कौन हकदार है। एक दिन गुरु नानक सच्चे पातशाह ने विराट रूप धारिया, अगे अगे गुरु नानक सच्चे पातशाह मगर मगर संगतां नू आउंदियां वेख तां गुरु नानक सच्चे पातशाह ने पिछा तकिया ते आखिया साडे पिछे की लैण आए हो, जाओ मुड़ जाओ करां नू सारे। गुरु नानक सच्चे पातशाह ने नदर कीती, माया दे ढेर ला दिते, आख्या साडे पिछे आओगे तां कुछ नहीं जे मिलना, आ माया चुको ते जाओ करां नू। जिन्हां ने माया तकी ओ माया दी चोलियां भर के वापस चले गए। थोड़ी दूर जाके साहब जी ने फिर मुड़ के वेख्या जे कुछ संगतां होर आ रही हैं। सात संगत बोलो श्री। गुरु नानक सच्चे पातशाह ने नदर कीती, चांदी दे ढेर ला दिते, आख्या भाई आ लो चांदी लो ते जाओ करां। जेड़े पैसे ते नहीं फिसले सन ओ चांदी ते डिग पए, चांदी चुक के कई होर भी तुर गए। साहब जी थोड़ी दूर होर गए, फिर परत के वेख्या जे कुछ संगतां जे आ रही हैं पिछे पिछे। साहब जी ने नदर कीती, सोने दे ढेर ला दिते, सोने दी मोरा ढेर लग्या, आ जेड़े पैसे ते नहीं डिगे चांदी ते नहीं फिसले ओ सोने दी मोरा वेख के उना दे मन गुरु नानक नू छड गए। सोने दिया मोरा चुक के करां नू चले गए। साहब जी फिर खड़ा जागे गए, फिर पिछे परत के वेख्या अजे थोड़ी जी संगत आ रही है। तां गुरु नानक सच्चे पातशाह ने नदर कीती ते हीरे जवरातां दे ढेर ला दिते, आख्या लो वही हीरे जवरात आ लै के चले जाओ करां नू, साडे पिछे आओगे तां कुछ नहीं जे मिलना। जेड़ी संगत थोड़ी बहुत रह भी गई सी ओ हीरे जवरात चोलियां विच भर के अपने अपने घरां नू चले गए। थोड़ी दूर गुरु नानक सच्चे पातशाह फिर गए, हुण परत के वेख्या तां इक पिछे पाई लैणा जी आ रहे हैं। साहब जी ने पुछया लैणिया तू नहीं गया वापस, माया दे ढेर लाए, सोने चांदियां दे ढेर लाए, हीरे जवरातां दे ढेर लाए, आ सारे ही चोलियां भर के घरां नू मुड़ गए तू नहीं गया। भाई लैणे जी दियां डुब डुब अखां भरियां, कहण लगे गरीब निवाज आ सारे जो चोलियां भर के घरां नू चले गए हन इन्हां दा पिछे कोई ना कोई है, लेकिन मेरा तां इक तू ही है, मेरा तां तेरे बिना होर कोई नहीं है, मैं तेनू छड के नहीं जा सकदा। सात संगत बोलो श्री। गुरु नानक सच्चे पातशाह नदर हेठां लै आए लैणे नू, आख्या अच्छा हां गरीब निवाज आ जितने मुड़ गए हन इन्हां दा कोई ना कोई सी ना पिछे, मेरा तां इक तू ही है। तां साहब जी ने आख्या चंगा लैणिया ओ सामने आ मुर्दा पिया है, उत्ते चिट्टी चदर पई है, आ लैणिया जे हुक्म मनाई तां पहले इस मुर्दे नू खा। भाई लैणा जी सत बचन करके, क्योंकि एक सत बचन दी पढ़ाई भाई लैणे जी ने पढ़ी, जा खड़ोते ते पुछिया हाथ जोड़ के गरीब निवाज फिर हुक्म करो किस पासियों दी खावा, पैर वालों के सिर वालों। गुरु नानक सच्चे पातशाह ने क्या लैणिया जिथों तेरी मर्जी, ते जदों हुक्म मन के जदों चदर चुकी तले कड़ा प्रसाद दी देग पई सी। सात संगत बोलो श्री। हुक्म मनिए होवे परवान तां खसमे का महल पाए सी। साहब जी ने भाई लैणे नू कोल सदया, अपने हिरदे नाल ला के
पाई लेने को अंग से लगाकर अंगद कर दिया। अंगद थापिया और आख्या लेनिया मेरे बाद इस गद्दी दा हुण वारस, इस गद्दी दा मालक तू है। इस वास्ते भाई गुरु नानक दे दर दी सेवा जे किसे ने मनोकामना करके कीती उसकी तो मनोकामना पूरियां होईयां, और जिन्हां ने गुरु नानक सच्चे पातशाह दे दर दी सेवा निष्कामता दे नाल कीती ओ गुरु नानक दे घर दे मालक बन गए। इस वास्ते साहिब पंजवें पातशाह बख्शिश कर रहे हैं और की कहिंदे हैं।

0: आता 100 रुपया फिर 15 नहीं घोर शाहूकार का फिर
1: शाबाश शेरिया ए माल करें जानवे
2: चौकम सरदार
0: अरे जबरा अरे फर्स तो जबरा
3: मेरी बॉडी ना देख रही पागल हो जाएगी मेरी सिंगिंग से काले चुते सिंगी होते धीरे वालू

जल्दी चुटियो जल्दी अरे तोड़ा चुटियो जल्दी अरे तोड़ा सुच्चा हाथ सुच्चा ना बंदा

इसने प्रथाए नौ में पासे दिन विकथन कीता हर की गत नाही कौ जाने जोगी जति तपी पछहारी अर बहलोक सियाने तू बेअंत को विरला जाने को विरला जाने गाहे सूफी गाहे जाहिद गाह कलंदर में शब्द गाहे सूफी गाहे जाहिद गाह कलंदर में शब्द रंग हाए मुख्तलिफ दारिद बुते अजारे मा तू बेअंत अपनी माया आप सारी आपे देखन हारा नाना रूप तरी बहु रंगी सब तेरे निया तू बेअंत ब्रह्मा न जाने अंत न पावत देव सभी।